ओ जी हाँ दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बदलो मोड नहीं, कोलकाता से कन्याकुमारी तक, हावड़ा ब्रिज से विक्टोरिया तक, जहाँ गाने हैं चटकदार, बातें हैं मजेदार, और आरजे है आपका यार एकदम बेकरार। तो छोड़िए टेंशन का ट्रांसमीटर, ऑन कीजिए अपना मूड का बूस्टर। अरे ओ सांभा, कितने रंग है इस दुनिया में, सांभा बोलेगा पूरे साथ, क्योंकि FM रेनबो में है रंग है साथ। सो Once again, नमस्कार कोलकाता, गुड मॉर्निंग हावड़ा, गुड मॉर्निंग न्यू टाउन, एंड हियर कम्स नमो नमो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ओनली ऑन 107 FM रेनबो पर, जहां पॉपी है आपके साथ आज की सुबह 10:04 पर।

जी हाँ, नमो नमो शंकरा की अर्धांगिनी कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से वो पृथ्वी में आती हैं अपने सारे संतानों को लेकर। और यही वो अवसर होता है जब कोलकाता चमक उठता है, दुल्हन की तरह बन जाती है पूरा शहर। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये इमोशंस है, ये फ्रीक्वेंसी है जो जोड़े रखता है एक दूसरे के साथ। ऊपर से लेके नीचे तक के लोग, हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग, हर श्रेणी के लोग ऐसे में एक साथ अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं, जुड़े हुए पाते हैं। और मज़ेदार किस्सों का ये शहर हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे स्टूडियो की घड़ी 10:10, वेल लेट्स हैव द मूड ऑफ गोइंग फॉर अ डिस्को सॉन्ग, क्योंकि नवरात्र का ये तीसरा दिन है। और मुझे मालूम है सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, नवरात्र सेलिब्रेशन होता है। और जब नवरात्र सेलिब्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं डांडिया का एक फील आता है, तो व्हाई नॉट द राइट सॉन्ग फॉर दैट फेस्टिव मूड।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

10:20 है आप विद ऑल द स्पीड सॉन्ग्स। जी हाँ, जाके ताकि हम सब बिल्कुल रॉकिंग मूड में आ जाए। हम आ चुके हैं, हमारा मूड बदल चुका है, हमारा सोचने का तरीका बदल चुका है, बिकॉज वो जो इश्क वाला लव, वो जो आपने गाना सुना, अब हम बात करेंगे मस्ती वाला कोलकाता के बारे में। कोलकाता जहाँ 4,000 से भी ज़्यादा पूजा होता है और हर पाड़ा हर मोहल्ला सोचता है कि आमर पैंडल शॉप के आगे मेरा क्लब सबसे आगे जाएगा। जब बात कंपटीशन की होगी तो कहीं बुर्ज खलीफा बनता दिखता है, कभी चंद्रयान का पंडाल बन जाता है। लास्ट ईयर तो शायद आपको याद होगा कि एक जगह मेट्रो ट्रेन वाला पैंडल बना था और जिसमें लोग घंटों लाइन में खड़े होकर उस ट्रेन की सवारी करी थी। तो ऐसा कुछ हमेशा अनयूजुअल देखने को मिलता है हमारे इस कोलकाता में। ये शहर एक अपने आप में जादू है दोस्तों, जादू कह सकते हैं, मैजिक कह सकते हैं। एंड साथ ही 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बना दिया। मतलब मैं बताती हूँ हिंदी भाषा में, वो ये कि सिर्फ बंगाल का ही नहीं, ये दुर्गा पूजा अब सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का धरोहर बना हुआ है। पेरिस का आइफल टावर देखा है, पर कोलकाता का मेड्रॉक स्क्वेयर वाला अड्डा जो दी देखो नी, तो फिर भाई तुमने क्या देखा। तो इसलिए ये सब तो देखना ही है, ये सब तो होना ही है, पाँव में घुंघ तो बजना ही है। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में।

चीज आपको बताना चाहूंगी कि पूजोते प्रेम, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इन 5 दिनों में, या पूरे नवरात्र के टाइम कह सकते हैं। जोदियो 5 दिन अगर पकड़ते हैं षोष्ठी के दशमी, तो कोलकाता में कहते हैं साल भर लड़का लड़की लाइब्रेरी, कॉफी हाउस या कॉलेज स्ट्रीट में नहीं मिलते जितना कि पूजा के इस 5 दिनों में मिलते हैं। जी हाँ, एकदम वो पहली नजर वाला पैंडल, एकदम नतून पंजाबी चोखे काजोल, नहीं तो चोखे चश्मा, और साथ में लड़कियों के लिए कह सकते हैं कि लाल पार सादा साड़ी, कपाले छोटे टीप और हाथ में धुनुची, ये होने से कुछ कुछ वो वाली फील आ जाती है। मतलब कहते हैं ना कि पहली बार मिलते हैं कॉलेज स्क्वायर के पैंडल में, भीड़ इतनी कि धक्का लगता है और लड़का बोल उठता है सॉरी, लड़की मुस्कुरा देती है, बस वहीं से कहानी शुरू हो जाता है बेशरम रंग वाला।

साहेब थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

दिल्ली वाला आगरा की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ पांच दिल वाला प्रेम। जी हाँ, 5 days लव स्टोरी। जैसे कि मैंने कहा कि पहली बार नजर मिलती है सप्तमी के दिन, नूतन पंजाबी लाल परेशानी और कॉलेज स्क्वायर के पैंडल में। लेकिन कोलकाता का एक रूल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, एक पैंडल में मिली नजर को प्यार नहीं कहते हैं। ऐसा टेस्ट तब होता है जब दूसरी बार, जी हाँ दूसरी बार, कोइंसिडेंस या माँ का इशारा कहें, अगला दिन अष्टमी, लड़का दोस्तों के साथ मेडॉक स्क्वायर में अड्डा देता है, वही लड़की इस बार बंधुदेर साथे हाथे फुचका। दोनों की नजर मिलती है, लड़का सोचता है अरे कल वाली, लड़की सोचती है एछे लेटा आबार। अब बात शुरू होती है, तुम्ही कौन पारा साउथ कलकत्ता? पुचका वाला भैया भी समझ जाता है कि एक एक्स्ट्रा पुचका फ्री अब देना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना बंगाली में इसको कि मायर चोक पड़ेचे, यानी कि माँ की नजर पड़ गई है दोनों पर। अब बात आती है नवमी की रात। जी हाँ, तो अगर तीसरी बार मुलाकात हुई तो प्रेम था जनो पाका पाका मुनि हॉबे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात नवमी की रात देशप्रिय पार्क या एक डलिया एवर ग्रीन्स, जहाँ सबसे सबसे सबसे बड़ी मूर्तियों को देखने को मिलता है। भीड़ में खो जाने का डर, इसलिए लड़का हिम्मत करके बोलता है चलो ना एकसाथे ठाकुर देखी। भीड़ में अगर तुम खो जाओगी तो, और अगर तीसरी बार भी वही चेहरा किसी और पैंडल में मिल जाए तो पारा के मतलब मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग सभी कहने लगेंगे एटा पूजोर जादू ना, एटा मायर इच्छे, मेरा दिल तुम पे फिदा।

0: बाखुदा कोई फिदा होने कर होने के लिए आया है, देखते हैं कौन है। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभी सरकार बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: स्वागत है शोभी, बताओ।
1: थैंक यू। देखिए आपने जो जो हमारा हम लोग का ना एक मन की बात छू गया है, क्योंकि आज जो अच्छा सा जो आलोचना कर रहे थे जो लव स्टोरी जो है, देखिए हम लोग का जब भी ये जब ये सोष्टी सोष्टी जब आता है, हम लोग का जो पारा में जो भी कोई वो लड़की है, हम लोग का टारगेट करता है जो हाँ वो मुझको चाहिए, वो मुझको।
0: अच्छा, लड़कियां लड़कों को टारगेट करती हैं? ओके ओके।
1: अब ऐसे से हम लोग देखते हैं, विशेषकर हम लोग अष्टमी दिन एक मजेदार बोलूंगा एक करते हैं, जो हम लोग का जो पुष्पांजलि जो देता है ना, तब भी हम लोग को वो फूल जो लड़की जो है उसको गाय में उसको छूटता है। वो ये हम लोग बदमाशी हम लोग का करते हैं। हाँ, और दूसरी बात जो है हम लोग का जो पारा में जब भोग देता है, जो इधर ये खिचड़ी आलू दम जब देता है, बेगुनी दे देता है, तो पारा से क्लब से एक बोल देता है कि एक ही बेगुनी देंगे, तो हम लोग का जो लड़की का पसंद जो है उसका हम दो बेगुनी दे देता है।
0: बड़ी मजेदार बात है।
1: बताऊं कि वो है दशमी के दिन का, यहाँ पर आबीर बोलिए जो सिंदूर बोलिए हम लोग का कोई कोई खेलता है, हम लोग का जो मेरे जो पसंद है जो भी हो उसको उसके साथ हम लोग का हल्का सा कोई आबीर बोलिए गाल में हम लगा देता है, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, हम लोग का इसके डांस करता है।

0: जो हल्का सा जो टच जो मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है सारी जो शरारतें हैं वो होती हैं इस चार पांच दिनों में। और सबसे मजे की बात ये है ना कि घर में जो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर जनरल जो है ना हमारे मम्मी और पापा के रूप में, वो जैसे थोड़ा सा अपने रस्ते में ढील देकर रखते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है 365 दिनों में इन कई दिन मतलब कुछ दिनों तक इन्हें थोड़ी सी आज़ादी दे दें और ज़रा से ढील दे देते हैं। वैसे मुझे ये बेगुनी वाली बात बहुत अच्छी लगी कि एक्टर बेगुनी जाएगा, दूटो बेगुनी हम दे सकते हैं भोग के टाइम में। और यही यही तो है जो प्राण है, ये एक लाइफ है, पांच दिनों की जो लाइफ हमें मिलती है कोलकाता में ये शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। वो जो कहा ना कि लोग देखिए आज के दिन में एक देश दूसरा देश के ऊपर मिसाइल छोड़ रहा है, बम छोड़ रहे हैं और पता नहीं किस तरह से तबाही मचाए हुए हैं, लेकिन हम फेंकते हैं फूल, ऐ गुरु छुड़े जाओ फूल छुड़े मारबो, कुछ ऐसा एक फीलिंग्स है। और कहते हैं ना कि पुष्प वर्षा होती है और दिल में एक उमंग जागता है पांच दिनों के लिए, और ये पांच दिन सर्वश्रेष्ठ दिनों में से होता है आपके ज़िंदगी में। और ये जो महोत्सव है पूरा, आज हम कह सकते हैं जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि यूनेस्को ने इसे पूरे पृथ्वी का मतलब यूनिवर्सल सेलिब्रेशन एक बना के रखा हुआ है। क्यों बनाया है? बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिल को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को स्पर्श करती हैं। फिलहाल ट्रिपी 10:45 10:45 और नेक्स्ट ट्रैक ट्रिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हमारे सभी दोस्तों के लिए जो बने हैं आज का हिस्सा इस कार्यक्रम का, पॉपी के साथ ओनली ऑन 107।

0: ट्विटर पे।
1: मजेदार बातों के साथ अब एक आवश्यक सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सरकार माफ कीजिए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को दोपहर 1 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायुग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 129वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता की मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष अर्थात टेलीफोन में संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स कुछ इस प्रकार हैं 0332212025 0332212061212 या फिर 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या फिर पेंशन अदालत के आवेदनों या फिर ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। तो ये थी मुख्य एक सूचना जो मुझे आपसे साझा करना था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे वही हमारी जो हमारा जो बातों का सिलसिला चल रहा था कि फाइव डे स्टोरी लव स्टोरी जहाँ नो फोन ओनली आईज। यस पूजा में नेटवर्क तो वैसे भी नहीं मिलता है तो सारी जो बातें हैं वो सिर्फ आंखों ही से होती है। साल भर जीन्स टी शर्ट पहनने वाले भी इन 5 दिन में बांगाली बाबू और बीबी लगने लगते हैं। ढाक की थाप और दिल की धड़कन जब धड़क धड़क ढाक ढाक बजता है तो धक दिन अधिन तो दिल वैसे भी तेज धड़कने लगता है। सामने वाला हो तो उसकी जो तेज़ी है ना वो उसमें भी जो स्पीड है वो आपने देखा होगा इकोकार्डोग्राम जिग-जैग वैसे चलने लगता है। और अगर नवमी तक बात बन गई तो दशमी को शुभ विजया के मैसेज भेज कर नंबर एक्सचेंज पक्का बिल्कुल। और अगर माँ ने चाहा तो अगले साल हाथ पकड़कर हर दिन घुमा करेंगे। तो कोलकाता का हर कपल ये पूजो वाली जो कहानी है ज़रूर है। फिर वो चाहे शोभा बाजार हो या टालीगंज बालीगंज या फिर टाला या फिर बिहाला हर कहीं कुछ ऐसी ही लव स्टोरीज चलती रहती है बनती रहती है और हम उसका उस वो जो लव स्टोरी का हिस्सा सामने से हो ना हो वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष रूप में हो ना हो लेकिन परोक्ष रूप में हम उसे सब हर कोई अनुभव करता है। फिलहाल नो ब्रेकअप सॉन्ग्स हियर कम्स द हुकअप सॉन्ग फॉर यू एंड फॉर ऑल माय फ्रेंड्स जो अगले 5-7 दिनों में पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं और मेरी ये कहानी सुनकर उनके दिल में वो कहते हैं ना खुशी की जो उमंग है वो जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे हो रही होंगी। फिलहाल मैं कहूँगी कि डेफिनेटली इन्जॉय द पूजा हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लड़की ने कह दिया नो no, तो यस, उसके कंसेंट के बिना नंबर भी एक्सचेंज नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी बातें होंगी वो दोनों के सहमति से होंगी, कोई ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए अपने लव स्टोरी को बढ़ाने के लिए। फिलहाल इस पैगाम के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, लेकिन हाँ, बता दूं कि हम एक बार फिर से मिलेंगे 11:10 पर आपका वही स्पेशल कार्यक्रम, जहाँ पर हम किसी खास व्यक्ति को लेकर आते हैं, किसी खास शख्सियत को लेकर आते हैं आपसे मिलाने के लिए, अपने महफिल को सजाने के लिए। तो फिर 11:10 पर हम मिलेंगे एक बार फिर आपके साथ, ओनली ऑन 107 पर नहीं, 100.1 FM गोल्ड पर। तो इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति, विल बी बैक अगेन वेरी सून। तब तक के लिए टाटा बाय।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का, 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।

वाई भी अलग है भाई, वाई भी अलग है। आप घर में हो, बाहर हो, टीवी पे हो, रेडियो पे हो, आप कहीं भी हो, वाई भी अलग है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस खुशनुमा मिजाज को बरकरार रखते हुए। एक खुशनुमा अंदाज में करेंगे हम फिल्मी बातें, ओनली ऑन तीन का तड़का। सिनेमा की बातें लेकर जाने का आई है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वाई भी अलग है। आज तृतीया है और नवरात्रि का जो पर्व है वो तो शुरू हो ही चुका है। महाषष्ठी को माँ का बोधन होगा और दुर्गा पूजा की ऑफिशियल शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, अपने बेस्ट, एकदम बेस्ट अटायर में, एकदम अपना सबसे बढ़िया वाला लुक लेकर वो बाहर निकल गए हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। काम पे जो गए हैं क्या वो पीछे रह गए हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो भी सज सवर कर गए हैं, जैसे मैं आई हूँ आज एकदम टिप टॉप होकर। तो वाइब है, हवा में कुछ वाइब है और इस वाइब को बरकरार रखेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आधा घंटा रहेगा मेरा और आपका साथ। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107 और कार्यक्रम शुरू हो चुका है तीन का तड़का। सबसे पहले रुख करते हैं बॉलीवुड की खबरों की। जब बात है तो एक ऐसी खबर जो अब फिलहाल नेशनल ना होकर इंटरनेशनल हो गई है, इसलिए हो गई है क्योंकि इस फिल्म में जो नज़र आने वाले हैं वो हैं हमारे देश के कलाकार, देसी कलाकार विद्युत जामवाल। लेकिन विद्युत कर रहे हैं एक हॉलीवुड फिल्म, वो भी एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत ही पॉपुलर एक फिल्म स्ट्रीट फाइटर, उसमें वो दिखाई देंगे। हम जानते हैं कि हरफन मौला कलाकार हैं विद्युत जामवाल, कलारीपयट्टू जानते हैं, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं। फोर्स, कमांडो, इन फिल्मों के लिए उन्होंने क्या ही नाम कमाया है, हम सब जानते हैं, उनको पहचानते हैं। तो इनको इतना बड़ा ब्रेक मिला है हॉलीवुड में,

अब इसी एक्शन अवतार के साथ उनका डेब्यू होगा हॉलीवुड में और बहुत जल्द वो स्ट्रीट फाइटर में दिखाई देंगे। धाल सिम का रोल निभा रहे हैं वो इस फिल्म में। एक इंडियन योगा और मार्शल आर्ट टीचर का रोल है ये, ऐसा जो एकदम शुरुआती जो खबरें हैं वो ये बताते हैं, जो अपनी लड़ाई की कला के लिए जाना जाता है और इस रोल में ढलने के लिए एक्टर ने भी बहुत मेहनत की है। फिल्म में उन्होंने जिनके साथ काम किया वो भी विद्युत को देखकर हैरान है। WWE रेसलर कोडी रोड्स जो इस फिल्म स्ट्रीट फाइटर में विद्युत के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने जमकर अभिनेता की तारीफ की है और उनके साथ साथ कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ट्ज़ भी बॉलीवुड स्टार के मुरीद होते दिखे। उन्होंने भी दिल खोलकर जमकर उनकी तारीफ की और खुले हाथों से एक्सेप्ट किया है विद्युत को। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं किस तरह से वो शूट कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, प्रियंका चोपड़ा के बारे में विद्युत जम्वाल ने कहा कि किस तरह से उन्होंने ये जो किवाड़ होता है ना, एक रास्ता बनाता है कोई, एक जगह का किवाड़ वो खोल देता है ताकि बाकी लोग भी वहाँ से एंट्री ले सके, तो प्रियंका ने वो काम किया है विद्युत ने कहा था। वेल, इतनी सारी बातें हुई, विद्युत जामवाल को बधाई देते हैं और उनकी आने वाली इस फिल्म का हम इंतज़ार करेंगे जो मैंने कहा ना कि खबर ये जो है ये इंटरनेशनल खबर है। फिलहाल आपको मैं सुनवाती हूँ अमित मिश्रा की आवाज़ में जामवाल की फिल्म का ये गाना।

एक खबर मैंने पढ़ी जो मुझे लगा कि अरे आपके साथ ये मैं ज़रूर बांटूंगी। धुरंधर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, लोगों के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई और अब ये खबर आ रही कि इस स्टूपेंडस बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद धुरंधर द रिवेंज यानी दूसरी वाली फिल्म आई सपोज अब ग्रैमी अवार्ड्स में रिकॉग्निशन की तलाश में है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका जो साउंड ट्रैक है वो 9 कैटेगरीज के लिए कंसिडर किया जा रहा है कि जमा किया जाएगा। साउंड ट्रैक को सबमिट किया गया है इनफैक्ट और 9 कैटेगरीज में उन्होंने ये जो सबमिशन है वो की है। 69th एडिशन ऑफ द ग्रैमी अवार्ड्स जो कि 2027 में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और सोशल मीडिया पर अपना ये जो ग्रैमी कैंपेन है इसके बारे में धुरंधर के जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने लिखा कि मतलब सब इतना जो प्यार बरसा रहे हैं उनके लिए, सब जितने दर्शक हैं उनको एक बड़ा सा थैंक यू। और अब देखते हैं कि वाकई में क्या किसी भी एक, मतलब 9 कैटेगरीज है उनमें से अगर एक भी ग्रैमी अगर धुरंधर द रिवेंज जीत जाता है तो ये वाकई में बहुत बहुत ही खुशी की बात होगी। हम सब जितने हिंदी फिल्म ऑडियंस हैं जो हिंदी फिल्में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, हिंदी फिल्मों की सांसें, ऑक्सीजन जो है उसका वो हमारी धमनियों में प्रवाहित होती है, ऐसे लोगों के लिए एक भी खबर जो हिंदी फिल्मों से जुड़ी हुई है वो खुशी ही देती है ना।

107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति

प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत बात करेंगे शिल्पकारों के लिए पेंशन एवं चिकित्सा सहायता योजना के बारे में। अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेकिन वृद्धावस्था के कारण दयनीय जीवन व्यतीत करने वाले या अभावग्रस्तता की स्थिति वाले पुराने कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक पेंशन योजना है। इस योजना में इन कलाकारों और उनके पति या पत्नी को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले रोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के एक चिन्हित नेटवर्क के माध्यम से उपचार के लिए सरकार की एक सुविधाजनक और किफायती स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर करते हुए चिकित्सा सहायता सुविधा प्रदान करने पर विचार किया गया है। फायदे क्या हैं इसके? ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह न्यूनतम 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 3,500 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी मासिक भत्ते का योगदान किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर कुल भत्ता 4,000 रुपये होगा। राष्ट्रीय कलाकार चिकित्सा सहायता कोष के फायदे क्या हैं? वर्तमान लाभार्थियों और उनके पति या पत्नी को वितरित की जाने वाली मासिक पेंशन राशि के अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने पर होने वाले व्यय को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पात्रता क्या है? आवेदक के कलाकार होना चाहिए, आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और आवेदक और उसके जीवन साथी की कुल वार्षिक आय

0: 48,000 रुपीज प्रतिवर्ष होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट www.indiaculture.gov पर, आप gov.in पर आप संस्कृति योजना निगरानी प्रणाली के पंजीकरण लॉगिन पेज पर MOC योजनाओं के लिए आवेदन के शीर्षक के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हमने बात की शिल्पकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता योजना के बारे में।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो कोलकाता पर चैनिका को, और तीन का तड़का कार्यक्रम बस अब थोड़ी देर में हम समेट लेंगे क्योंकि हमारा जो समय है ना वो समाप्ति की कगार पर है। 3:28 और 27 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय, ये समय जो है आप नोट कर लें और एकदम टस से मस नहीं आप होंगे, समय के साथ साथ चलेंगे, हम एकदम सही वाला टाइम बताते हैं, है ना। और रोज आते हैं आपसे मिलने, ये दोपहर की ये जो बोरियत वाली जो एक वाइब होती है, आज वाइब में ही मैं रहूंगी। शुरुआत भी कार्यक्रम की वाइब से हुई, अब हम जब समेट रहे हैं तो अभी भी वाइब की ही बात करूंगी। तो ये बड़ी एकदम से उबासी आ जाए ऐसा समय होता है दोपहर का, ये जो समय होता है लगता है कि कुछ ऐसा लिया जाए ताकि ताजगी आ जाए, दिमाग जो है वह फ्रेश हो जाए। तो चाय की तलाश में रहते हैं बहुत लोग जब ऑफिस में होते हैं, कॉफ़ी चाय उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो थोड़ा मन जो है आपका चंगा हो जाता है। तो हम भी वही काम करते हैं, हम आपको सुनवाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी फिल्मों की कुछ खबरें और साथ ही अच्छे अच्छे खूबसूरत वाले गाने। तो आज के लिए बस इतना ही, तीन का तड़का अब मैं यहाँ पर समेटूंगी और अब आपके लिए मेरे साथ यही बने रहने का समय है क्योंकि 3:30 हम सुनेंगे विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तो बने रहे मेरे साथ प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो कोलकाता।

0: उमंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान।

अबान अब्बासी और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक है। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। या जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओं, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी। और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है
जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई, तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
4: जवानों,
5: जी सर,
4: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
5: जी सर, हमने सुना है कि

0: यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो?
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो अब अभ्यास शुरू करते हैं।
2: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
2: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
2: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
3: फेंको।
2: फेंका जनाब।
3: अरे अरे ये क्या हुआ,
4: ये क्या हुआ?
2: अरे बचो बचो बचो,
3: फटने जाओ,
2: सभी जाओ, सभी जाओ,
3: जमीन पर लेट जाओ,
2: अरे निकल जाओ,
3: धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा
5: है। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
6: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
6: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
8: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
8: बहादुर सैनिक हो तुम।
5: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
10: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
7: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
10: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
7: हाँ हाँ, कहो।
10: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
7: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
10: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
7: गो अहेड यंग मैन।
10: सर।
5: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
6: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
5: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
6: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
11: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
2: जी सर,
1: हम पूरा ध्यान रखेंगे।
11: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे,
4: इस बीच

0: बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर! समय मत गवाओ, फायर!
3: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
5: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
4: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
5: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
4: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
5: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
4: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
5: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: শুনছো ক্যাফে কলকাতা, ক্যাফে কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो 107 एफएम रेनबो, साथ सुरेश शारदी, साथ सुरेश शारदी।
4: শুনছো ক্যাফে কলকাতা,
5: ক্যাফে কলকাতা
4: 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है।

0: समाधान दीदी की एआई तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
3: प्यार भरे नगमे,

है ये आपके साथ, ये अब जो लग पड़ी है तो फिर रहने वाली है विजयादशमी तक। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ये रंग ऐसा है, भक्ति का रंग, उल्लास का रंग, खुशी का रंग, जो अब तो उतरने से रहा, चढ़ा ही रहे ये रंग खुशियों का। बहुत बहुत स्वागत। छाया लोक प्यार भरे नगमे लेकर आज चैनिका हाजिर है। शुभ तृतीया सुनने वाले सभी श्रोताओं को। और आज क्योंकि इस रंग की बात हुई है तो पहला गाना प्रेम पुजारी फिल्म से, फूलों के रंग से, यानी प्रेम जहां है वहां रंग भी है। तो क्यों ना आज ऐसे प्यार वाले गीत सुने जाए, प्यार भरे नगमे सुने जाए जहां पर रंगों की बात है। ऐसे गाने, ऐसे रूमानी रोमांटिक गाने जहां रंग जो है उनका जिक्र है, उनका बयां है। पहला गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म से हमने सुना। सचिन देव बर्मन का संगीत था, नीरज ने इस गीत को लिखा था। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाऊंगी वो भी किशोर कुमार की ही आवाज में, उनका साथ किसने दिया है मैं नहीं बताती, चलिए, लेकिन ये गाना सुनकर आप जरूर झूम उठेंगे, ये मेरा वादा है। एक और रंग वाला गीत, लेकिन इसमें रूमानियत है, रंग के साथ प्रेम भी रच बस गया है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 139th डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्योरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय,

पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wbr@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वो दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332120250 0332120612 या फिर 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए और ध्यान रहे डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

भरे नगमे। जा रही है कार्यक्रम छाए लोग प्यार भरे नगमे सुन रहे हैं आप चयनिका के साथ। और आज हमने प्यार में रंग को मिलाया है, और वैसे भी प्यार तो कहते हैं कि सतरंगी होता है, तो आज कोशिश कर रहे हैं कि इसके सभी रंगों को एक्सप्लोर करें। तो एक ये रंग थोड़ा सा अलग किस्म का आप सबके लिए, दिल से फिल्म से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में मैं सुनवाना चाहती हूँ। ये जो फिल्म थी, एक से बढ़कर एक गाने थे इस फिल्म में। ए आर रहमान का संगीत है, गुलजार का गीत है। और हाँ, इससे पहले जो हमने गीत सुना उसके बारे में अगर बात ना करूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो जिक्र उसका होना चाहिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में हमने आपको सुनवाया वो फेमस वाला गाना, जो भले ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड किस्म का गाना है लेकिन फिर भी दिल को छू जाता है जब जब हम सुनते हैं। राम लक्ष्मण का संगीत है और असद भोपाली ने इस गीत को लिखा है। तो चलिए, अभी फिलहाल जिसके बारे में बताया, थोड़ा अलग रंग जोड़ेगा ये प्रेम के रंग में सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज। फिल्म का नाम दिल से।

भरे नगमे। कितनी रंगीनियों में तेरी याद किस कदर सादगी से आती है। अभी चारों तरफ हैं बहुत रंगीनियां, है ऐसी रोशनी जो आंखों को एकदम से कंफ्यूज करती, लेकिन अगर किसी की याद आ जाती है इस भीड़ में भी, इस उल्लास वाले परिवेश में, माहौल में भी, तो समझ लीजिए कि वो इंसान जो है वो आपका बहुत बहुत बहुत स्पेशल कोई है। और उसकी याद अगर आती है तो मिलाइए ना उसको।

एक कॉल नंबर तो याद होगा, अगर नंबर याद है तो फोन कीजिए, बात कीजिए उससे जो बहुत सारी रंगीनियों में भी सादगी से आकर आपके दिल में बस जाती है या जाता है।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

कितनी बेरंग जिंदगी है मेरी, इश्क के रंग यार भर दो ना। फिलहाल तो इश्क खुद से और खुद की जो कहते हैं ना कि एक जो अस्तित्व की अगर हम बात करें या खुद की पर्सनालिटी की बात करें, खुद की वेलबींग की बात करें, खुद के या सेल्फ के बहुत सारे आयाम हैं, तो वो इश्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अपने अंदर सेल्फ लव के रंग भरे और साथ में जो साथ आपके चलते हैं हमेशा दिन रात, उनकी ज़िंदगी में भी रंग भरे, उनको साथ लेके चले। खुशियों का मौसम है, खुशियों का माहौल है ये फेस्टिव सीज़न। बस यही ऊपर वाले से दुआ है कि ये जो इतनी खुशियाँ अभी फ़िलहाल हैं हमारे चारों तरफ, उनमें डूब के, उन खुशियों के रंगों में डूब के आप बहुत एंजॉय करें। चैनिका फिलहाल कहेगी टाटा बाय बाय। एफएम रेनबो कोलकाता पर छाए लोग प्यार भरे नगमे लेकर आई थी मैं आज। रंगों की हमने आज बात की, बहुत सारे रंग देखे, उन रंगों में खुद को डुबो दिया। फिर से एक बार आप सबको शुभोत्तरीया, दुर्गा पूजा इज राउंड द कॉर्नर, तो बस एंजॉय कीजिए। नवरात्रि बहुत बहुत बहुत शुभ बीते। एफएम रेनबो सुनते रहिए। अंतिम गीत कार्यक्रम का श्रेया घोषाल, जावेद बशीर की आवाज में आप सबके लिए भाग मिल्खा भाग से।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं जतिन ललित। आवाजें लता मंगेशकर और कुमार शानू और फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इंडियन सिनेमा और रोमांस का रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी कि खुद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अगर ये कहा जाए कि बॉलीवुड की धड़कन में

मांस पसता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुरू से लेकर आज तक प्यार और मोहब्बत के किस्सों ने बड़े पर्दे पर दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:26 और बॉलीवुड और रोमांटिक फिल्मों के अनूठे रिश्तों को अगर समझना है तो बहुत शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी हाँ, इंडियन सिनेमा की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लेकर शुरुआती दर्शकों में कहानियां पौराणिक और सामाजिक थीं, लेकिन जैसे जैसे सिनेमा का विकास हुआ प्रेम कहानियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। 1950 और 1960 के दशक में राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे अभिनेताओं ने पर्दे पर रोमांस की एक नई परिभाषा गढ़ी। राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों में जो जगह बनाई वो आज भी अमिट है। बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107, दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

कुछ देर पहले मैंने राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की बात की थी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि देवानंद का स्टाइलिश अंदाज और राजेंद्र कुमार की रोमांटिक फिल्में इस बात का गवाह हैं कि दर्शक हमेशा से ही रोमांटिक स्टोरीज को पसंद करते आए हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने रोमांटिक हीरो के रूप में जो मुकाम हासिल किया, उसने बॉलीवुड में रोमांस को लेकर एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उनका आंखें झुकाना, सिर झुकाकर मुस्कुराना और एक्ट्रेस की तारीफ करना युवाओं के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन दौर में भी कभी कभी और सिलसिला जैसी फिल्मों में मैच्योर रोमांस की खूबसूरती देखने को मिले। उसके बाद बारी है 90 के दशक की। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा का जादुई रोमांस का एरा आप कह सकते हैं। यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में सिफोन की खूबसूरत साड़ियों और खूबसूरत गानों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि रोमांस को एक अलग ही लेवल दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने हिंदी सिनेमा में रोमांटिक स्टोरीज की पूरी परिभाषा ही बदल दी। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी ने राज और सिमरन के रूप में जो जादू चलाया वो आज भी पीढ़ियों से पसंद किया जा रहा है। और इसी दशक में कहो ना प्यार है और दिल टूटे आशिक और साजन जैसी फिल्मों ने भी युवाओं के दिलों पर राज किया। इतनी बातों के बाद एक खूबसूरत सा नगमा तो बनता है, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:55, यानी कि बॉलीवुड और रोमांस एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक सिनेमा रहेगा तब तक प्यार, तकरार, मिलन और जुदाई की कहानियां बड़े पर्दे पर गूंजती रहेंगी। और अब जब जुदाई की बात हुई है तो मुझे याद आया कि मुझे भी आप सबको टाटा बाबाई कहना है, क्योंकि 8:56। तो बस आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई, टाटा बाबाई।